सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

इज्जत है माचिस की कांडी लाओ क्या।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम। और हमेशा की तरह मैं यही बोलने वाला हूँ कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, कुछ ऐसी मतलब इन परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि इंसान चाह कर भी मतलब जल्दी में नहीं कर सकता, नहीं आ सकता है कि नहीं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं आ चुका हूँ फाइनली आप सबके साथ। और फिलहाल मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: जताना
1: बिल्कुल छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, और हमें तुमसे बेपनाह मोहब्बत है फिर भी बताना नहीं आता। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराज भाई यानी सरफू पटेल जी जुड़ चुके हैं, मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, एमडी जलील जी वेलकम है, अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, और राकेश शर्मा जी ओके, और सुनीता गोप जी हैं, और साथ ही साथ निशांत राय बोले जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, और प्रियंका जी हैं, ज्योति खटवटे जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, हुकुमचंद जांगड़ जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, एमडी गुलबाह जी हैं, और पीकू राय जी हैं, और काजल झक्का जी हैं, और सर्वेश भगत जी हैं, और सोनू जी हैं, बबीता जी हैं, जाकिर खान जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, और जितेंद्र सिंह जी हैं, नीतू सरन जी हैं, और असलम राणा जी हैं, और यानी कि प्रीति रायदास जी भी हैं, और साथ ही साथ आरजे सोनी जी भी हैं, और जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं सभी का वेलकम करते हैं। एम ताहिर जी भी जुड़ चुके हैं, इनका भी वेलकम करते हैं। और बता दूं कि आज हमारे तीन तीन दोस्तों का जन्मदिन है, एक हमारे आदरणीय सर्वेश भगत जी का जन्मदिन है, और अरुणा दीदी जी का जन्मदिन है, और काजल झक्का जी का जन्मदिन है। तो आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के सबसे पहले गाने से, और पहला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरे मन का मौसम बदलने लगा है, क्योंकि तेरे नाम से ये दिल धड़कने लगा है। इस गाने को सुना चाहती हैं रितु जी, और ये गाना तो भाई अगर प्ले ना हुआ तो समझ लीजिए मजा नहीं आएगा। स्टार्टिंग करते हैं।

बहुत प्यारी डिमांड है। आजकल इतने डिमांड प्यारे प्यारे आए हैं ना कि माय गॉड क्या कहना। बहुत ही प्यारा डिमांड सभी दोस्तों का है, एक से बढ़कर एक। आज तो विनर पे विनर होने वाला है।

0: बिल्कुल मेरे मन का मौसम बदलने लगा है और बहुत से दोस्तों का फीडबैक भी आया हुआ है। ओह माय गॉड, मैं कहाँ से फीडबैक शामिल करूँ, क्योंकि मैंने दोस्तों का मैसेज तो ओपन नहीं किया था। यहाँ से शुरू करते हैं सर्वेश भगत जी, क्योंकि सबसे पहले यही देते हैं फीडबैक।
1: हरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। ऋतु जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और इनके पास है, कहाँ गया जी, हाँ, गजानंद जी लिखते हैं कि मेरे मन का मौसम बदलने लगा है, बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला, लाजवाब डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। नीतू शरण जी लिखते हैं कि ये ऋतु जो गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं जी, ओके जी। और संगीता अम्बुलकर जी जुड़ चुकी हैं, लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है जी, ये थैंक यू सो मच आपका। और पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि ये रितु जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। राजेश कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और निशांत राय बोलो जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, ये तो लगता है, हाँ बिल्कुल। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ आज के बर्थडे गर्ल का, यानी काजल झक्का जी का, तो काजल झक्का जी का जो अगला डिमांड है क्या सुनवाना चाहती हैं, सुनते हैं ना।
2: मेरे जिस्म में खून से ज्यादा आपका प्यार रहता है, मेरे जिस्म में खून से ज्यादा आपका प्यार रहता है, मेरी जिंदगी में हर लम्हे में आपका इंतजार रहता है, मेरी जिंदगी के हर लम्हे में आपका इंतजार रहता है। वैसे तो हम बात बात पर लड़ते हैं, वैसे तो हम बात बात पर लड़ते हैं, पर मेरे दिल में, पर मेरे दिल के कतरे कतरे पर आपका अधिकार और प्यार रहता है, मेरे दिल के कतरे कतरे पर आपका अधिकार और प्यार रहता है। नमस्ते, गुड इवनिंग आपको, रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी से
0: जी, वेलकम है आपका।
2: मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग में भेज दे रही हूँ, और ये सॉन्ग मैं सुना दूंगी सबसे पहले मिठू मियाँ जी को, आपको, वंशिका जी को, और जितने दीवाने दीवानियाँ सुन रही हैं, जितने दोस्त आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सभी को सुना दूंगी।
0: ओके, लेकिन आपके शायरी के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि लिखूं तो प्यार हो तुम, लिखूं तो प्यार हो तुम, और सोचूं तो इश्क हो तुम, और चाहूं तो मोहब्बत हो तुम, अब चाहे लिखूं सोचूं या चाहूं, मेरे हर कदम पर हम सफर हो तुम, हम सफर हो तुम। इंजॉय द ट्रैक, काजल झक्का जी। और सच में ये दिल आपका हुआ, बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवारा बजा सच में। आज तुम जो यानी प्ले लिस्ट हमारे दोस्तों ने भेजी है सभी मेरे पसंद के गाने हैं। माई गॉड, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और ये क्या कहते हैं, जरा सा सुन लेते हैं सरोजीत सेठी जी का।
1: अमन सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सरोजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: वेलकम जी,
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए।
1: हम अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं
0: जी,
1: तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना देगा।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और सुनील कुमार जी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं।
2: अमन भैया नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ा गया हूँ आपके प्रोग्राम से। आज सर्वेश भगत जी का, अरुणा जी का और काजल झा जी का जन्मदिन है, तो तीनों को मेरी तरफ से उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे आरती जी लिखती हैं कि वह वह क्या बात है अमन सर जी, और सबसे पहले मस्त मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, और ये यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं।
3: अरजय अमन सर जी,
0: जी
3: काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बार उनको खूब खुश रखे, आवाज रखे, यही आशीर्वाद भी देते हैं, दुआ भी करते हैं। इस बार उनको खूब खुश रखे, यही हमारा दुआ है।
0: धन्यवाद देते हैं, आपके आशीर्वाद की सबकी जरूरत है, मुझे भी आशीर्वाद अपना देते रहिए। आत्माराम जी जुड़ चुके हैं, आत्माराम पाटिल जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और आत्माराम जी के साथ साथ दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ हमारे राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी को का डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और पीके रबू जी लिखते हैं कि तुम मिले जब से नंबर वन सॉन्ग सुनने को मिल गया है मुझे। राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि ये काजल झक्का जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, झक्कास लगी है, धन्यवाद देते हैं। जितेंद्र जी लिखते हैं कि वाह काजल जी क्या गाना सुनाया आपने, दिल खुश कर दिया, धन्यवाद देते हैं आपको। जाकिर खान जी लिखते हैं कि सुपर चॉइस है काजल झक्का जी का। और कुंता मीना जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू काजल जी, सर्वेश जी एंड अरुणा जी। ओके, और असलम राणा जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन भाई जान। ओके, कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करने वाला हूँ क्योंकि आज सभी गाने मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा। नीतू जी लिखती हैं कि ये काजल जी को जी जो मतलब जो जो यानी कि सीतामढ़ी से हैं उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। रुबीना नाजी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम, और लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे काजल झक्का जी, सर्वेश भगत जी और अरुणा जी। ओके, और लिखते हैं कि सुपर झक्का सॉन्ग सुनने को मिला है। और सोनू जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ जी, वेलकम करते हैं भाई आपका। विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर जी लिखते हैं कि हमारी मोहब्बत देखनी है तो गले लग कर देखो। बिल्कुल सही कहा, हमारी मोहब्बत देखनी है तो गले लग कर देखो, धड़का नहीं बढ़ गई तो मोहब्बत ठुकरा देना, इसलिए तो कहें कि तूने लगाया गले से, है ना, यानी तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, और तूने लगाया गले से तो दिल को करार आया, है कि नहीं जाकिर खान जी। और प्रियंका जी क्या कहती है, इनकी सुनते हैं।
4: हेलो अमन जी, गुड इवनिंग। ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, और काजल जी को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराएं, और हमें इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ सुनाती रहे, बिकॉज मुझे शायरियाँ नहीं आती, मुझे सॉन्ग सुनने का शौक है।
0: कोई बात नहीं, ओके, धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे सभी दोस्तों को। फिलहाल अगला जो डिमांड है मेरे पास वो साजिया जी का है, और साजिया जी सुनना चाहती हैं ये दिल कहाँ गया, ये तो हो गया था, ये दिल आपका हुआ, और हाँ ये बात।

0: और यहाँ पे बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं, जैसे कि हमारे राधा कृष्ण गोव जी और यानी कि सुनीता गोव जी, ये भी जुड़ चुके हैं तो इनका भी वेलकम करते हैं। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मनीषा शर्मा जी आपका भी। और मैं बता दूं कि राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये काजल झक्का जी को हैप्पी बर्थडे, एंड हमारे सर्वेश भगत जी को और अरुणा जी को भी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है, जिसका इंतजार लाखों लोग बेसब्री से करते हैं, ओह थैंक यू सो मच। और पिकू राय जी लिखते हैं कि ये कुछ कहा आपने, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब डिमांड, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जागीर खान जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं,
1: हेलो आरजे अमन सर, अनिल मेहता सूरत गुजरात से, हैप्पी बर्थडे तीनों भाइयों बहनों को कहूँगा, और आपका लाइव शो में मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत ही लाजवाब गाने चल रहे हैं एक से एक बढ़कर। मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, बिजी था, इसलिए थोड़े दिन बाद जुड़ा हूँ, और सही में रेडियो हॉटस्टार सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। आपका जो ये लाइव शो है बहुत अच्छा है, ओके
0: थैंक यू सो मच। इसी बात का जो डिमांड है मेरे पास वो जाकिर खान जी का है, और वो दिलरुबा ओ सजना तुमसे प्यार हो गया, एंजॉय कीजिए इस गाने को जो मुझे सच में बेहद पसंद है। आज के सभी गाने को मैं क्या ही कहूँ, सभी गाने से बढ़कर एक है। और इसके बाद अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करूंगा प्रियंका जी।

0: जी बिल्कुल, गाना बहुत ही प्यारा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वैसे निशांत रेबर लिखते हैं नंबर वन सॉन्ग चल रहा है जी बिल्कुल, और यहाँ पे पिकू राय जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद, ओ माय गॉड मस्त लगा है एकदम। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
1: रहमान सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त जाकिर जी के पसंद बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही प्यारी डिमांड है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच जाकिर जी। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद बहुत ही बेहतरीन लाजवाब लगी है, उनको मजा आ गया सुनकर। और राहुल पासी जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी कि प्रियंका जी के, और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं तू लगे चांद का टुकड़ा, मेरा फेवरेट गाना। और ये गाना तो मेरी सुंदरता की मूर्त जी को मैं कहूँगा कि डेडिकेटेड है।

0: बिल्कुल, मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा, और सच में सच में सच में तू लगे चांद का टुकड़ा, मतलब बिल्कुल सुंदरता की मूरत। और वैसे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए, ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: नमस्ते जाकिर खान भाई साहब जी, आपका गाना तो हमें झूमने पर मजबूर कर दिया। जब तक गाना चला मैं बहुत नाची, सारे कंपनी में मुंह देखता रह गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को भाग गया ये गाना तो। सच में आज तुमने मुझे दिल खुश कर दिया, इतना अच्छा गाना सुनाया। और सारे दोस्त के गाने अच्छे चल रहे हैं तो सबको धन्यवाद करते हैं, मगर आपका गाना सुपर हिट।
0: थैंक यू सो मच बबीता जी, और आपके तरफ शोर बहुत होता है ये फिर मैं।
2: जय अमन सर जी, प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड जी, बिल्कुल सही सही कहा आपने। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि अच्छा ओके ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। और पिकू राय जी लिखते हैं कि ये तू लगे चांद का टुकड़ा गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, नंबर वन लगा है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी का डिमांड बहुत ही लाजवाब। और संगीता अम्बुलकर जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं कि वाव ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि तू लगे चांद का टुकड़ा, वाह क्या गाना है, दिल खुश कर दिया भाई। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी का शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि वाह वाह बहुत लाजवाब गाना सुनने को मिल गया है, बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और सोनू जी लिखते हैं कि भाई सोनू जी इत्मीनान रखिए, जरूर कोशिश करूंगा गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है जी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बात पे अगला जो डिमांड है वो यानी कि प्रीति रायदास जी का है, ये सुनना चाहती हैं, अगर दिल कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे। मैं तो यही कहूंगा कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, ये इस गाने का जवाब मैं जरूर थोड़ा सा प्ले करूंगा।

0: ये फीडबैक शामिल करते हैं।
1: थैंक यू अमन जी, आपने मेरा सॉन्ग सुनाया। मैंने देखे लाखों मुखड़े,
0: अच्छा
1: ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा तो लगे चांद का टुकड़ा।

0: क्योंकि चांद सी महबूबा हो मेरी। अच्छा। कब ऐसा मैंने सोचा था।
1: हाँ, तुम बिल्कुल,
0: हाँ,
1: वैसी,
0: तुम
1: हो।
0: बिल्कुल वैसी हो
1: जैसा मैंने
0: जैसा
1: सोचा था।
0: मैंने सोचा था। थैंक यू मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: यानी प्रियंका जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है कि नहीं। फिलहाल यानी पीकू राजी लिखने के, अगर दिल कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत खूबसूरत गाने के लिए थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखने की, अगर दिल कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत ही प्यारा गाना, थैंक यू सो मच। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि अमन सर जी यानी कोई नए आरजे रेडियो हॉट स्टार में जो है तो प्लीज हमें अच्छा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से आरजे अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं और जुड़ने वाले भी हैं। मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ से सुनने को मिलते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाव, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, अगर दिल का है। निशान राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना था। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, ओके थैंक यू सो मच। और शायद इनका फीडबैक है, मेरे ख्याल से ये फीडबैक है या नहीं, जरा आप मुझे बताइएगा एक बार, यानी कि काजल झक्का जी, क्योंकि देर हो चुकी है आपके फीडबैक में, या मैं प्ले करता हूँ, देखता हूँ क्या है।
2: मेरी बीरान महफिल का हसीन जमाना हो तुम, मेरी बीरान महफिल का हसीन जमाना हो तुम, मेरी बाहों का मुकम्मल ठिकाना हो तुम, मेरी बाहों का मुकम्मल ठिकाना हो तुम, तुम ठिकाना हो तुम, बिखरे हुए ख्वाबों का प्यारा सा आसियाना हो तुम, बिखरे हुए ख्वाबों का प्यारा सा आसियाना हो तुम, मेरी धड़कनों में छिपे हुए, मेरी धड़कनों में छिपे हुए एक तराना हो तुम, मेरी धड़कनों में छिपे हुए एक तराना हो तुम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ऐसे भी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, मेरा दिन इतना अच्छा बनाने के लिए। और अमन जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।
1: अच्छा, धन्यवाद,
2: इतना खूबसूरत दिन आप भी बना दिए मेरा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको।
1: Welcome.
2: और सभी दोस्तों को भी, सर्वेश भगत जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, इतना अच्छा फीडबैक दिए और इतना सारा आशीर्वाद दिए, आपकी आशीर्वाद की तो सही में बहुत ही जरूरी है, थैंक यू आपको।
1: Okay,
2: और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं काजल सीतामढ़ी से सुन रही हूँ आज का प्रोग्राम, सही में बोले तो झक्का।
1: ओके, धन्यवाद देते हैं इसी बात पे। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी का डिमांड मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब ये था पसंद, अगर दिल कहे तो सुनने को मिला, मजा आ गया है। आरती तिवारी जी लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि अब खुद को फिर से इश्क में बोने का दिल हुआ, आज फिर मेरा फूल सा होने का दिल हुआ, उन फूलों का तुम पे बरसने का दिल हुआ, आज फिर से एक सपना सजाने का दिल हुआ। वाह वाह, क्या बात है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहती है, बहुत लंबा है, थोड़ा बाद में सुनवाएंगे यानी प्रियंका जी इसके बाद। फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ रमेश सैनी जी का है। रमेश सैनी जी सुनना चाहते हैं नाना करते मैं प्यार कर गई, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि हमारे इन ग्रुप में बहुत से नए नए दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। जैसे कि अभी धमाल मचाए हुए हमारे इन गुलबाज जी, सोनू जी, राहुल पासी जी और प्रियंका जी, इट्स कुमार जी इन विवेक जी और आरजे सोनी जी भी हैं और इन प्रमुख जी भी हैं, मतलब जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, वेलकम।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। पिकुराजी लिखते हैं अमन सर जी। ओके ठीक है, कोशिश करता हूँ। और जाकिर खान जी ने अपना दूसरा गाना भेज दिया, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ जल्दी प्ले करने के लिए। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाना करते प्यार में कर गई, शानदार गाना। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि ये लिखते हैं ये मंजिल तुम पाओ रास्ता हम बनाएंगे, और खुश तुम रहो और खुशियाँ हम दिलाएंगे, बस तुम रेडियो हॉटस्टार के दोस्त बने रहो, दोस्ती हम निभाएंगे। अच्छा सच में का निशांत रे बोल लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है। अगला जो डिमांड है नीतू शरण जी का है, सुनना चाहती है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, सच में बहुत प्यार करता है। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है लेकिन डरता बहुत ज्यादा है क्योंकि ओके। और यहाँ पे बहुत से दोस्त हमारे यहाँ पे शॉर्ट आउट में यानी कि सभी दोस्तों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील कुमार जी लिखेंगे नाना करते प्यार वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं दिलीप कुमार जी आपका। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और पीकू राज जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी पसंद है अच्छा। और अमीना कुमारी जी ने ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ गाने बजाने के लिए। और प्रियंका जी क्या कहती हैं,

जी, तो आपने कुछ बोला नहीं, सिर्फ गाना गा दिया, कुछ बोला भी कीजिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि धड़कन फिल्म का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और संगीता अम्बुलकर जी लिखते हैं सुपर हिट सॉन्ग जी, और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि लाजवाब दीवान के लिए धन्यवाद देते हैं, और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी प्रमोद कुमार जी का है, मौसम बदल रहा है, सुनवाते हैं इस गाने को, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल मौसम बदल रहा है, जादू सा चल रहा है, गर्मी अभी भी बड़ी मतलब बढ़ी हुई है, अभी भी गर्मी लग रहा है। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये क्या कहती हैं
1: अमन जी?
0: जी
1: सॉन्ग इतने अच्छे चल रहे हैं कि पहले हम सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद ही अपना फीडबैक देते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार जो

0: थैंक यू,
1: वेलकम जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी,
2: अरजय अमन सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए हैं, और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: ओके जी, और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि मौसम बदल रहा है, जादू से चल रहा है, गाना अच्छा लगा है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये प्रमोद जी की जो डिमांड है बहुत ही प्यारी लगी। इसी बात पर जो डिमांड है हमारी, ये सुनीता गोप जी का है, और सुनीता गोप जी क्या सुनना चाहती हैं, सुनवाते हैं इस गाने को। सुनीता गोप जी,

0: और अगला जो डिमांड आने वाला है ना हमें सरोजी सेठी जी का, सच में वो गाना मेरा दिल के बहुत ही करीब है और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। ये फीडबैक
1: अर्जे अमन सर जी सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: ओके जी थैंक यू सो मच। और अर्पिता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अर्पिता जी आपका। और ओके और यहाँ पर राधा कृष्ण को देखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है जी। और ये पीकू राय जी लिखते हैं कि ये चोरी चोरी दिल दिया था, बहुत ही मस्त गाना सुनने को मिला है। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक गाने चल रहे हैं, सभी गाने लाजवाब है जी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आज सभी गाने एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये क्या करें क्या करें, ये नज़र मिल गई, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और सुनीता गोपी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अरुणा जी और काजल झक्का जी सर्वेश भगत जी आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। ओके जी और काजल झक्का जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। ओके जी और ये क्या कहते हैं हिंदी सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी नमस्कार, मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन पहला मैसेज है मेरा और ये गाना जो चल रहा है चोरी चोरी दिल दिया था बहुत ही अच्छा है और इसके लिए मैं कुछ गाना चाहूँगा।
0: बोलिए बोलिए।
2: कि जब मैं झुमका दिलाने के काबिल हुआ तब तक वो मंगलसूत्र पहन चुकी थी।
0: ओह माय गॉड।
2: थोड़ा सा हंसने वाला है लेकिन थोड़ा सा सीरियस भी है।
0: अच्छा
2: धन्यवाद ऐसा गाना प्ले करने के लिए।
0: हम समझ सकते हैं भाई आपके साथ यानी कि क्या गुजरी होगी ऐसा अगर ऐसा हुआ होगा तो। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि मेरी रूह की वो तलब हो तुम। लिखती है मीना जी कि मेरी रूह की वो तलब हो तुम और कैसे कहूँ कि तुम सबसे अलग हो तुम। और खामोशी का मजा वही उठा सकता है जो फना हुआ है वो किसी के प्यार में। अच्छा और लिखते हैं सच में एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और प्रियंका जी क्या कहती हैं सुनते हैं।
3: अमन जी सारे सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, मैं
0: है।
3: भी एक छोटी सी शायरी लेके
0: अच्छा,
3: आई हूँ।
0: अच्छा,
3: कलम थोड़ी कमजोर है हमारी, कलम थोड़ी कमजोर है हमारी, तारीफ तुम्हारी एक साथ लिख नहीं पाएगी।
0: अच्छा।
3: अपनी आँखों से कहो जरा कम इतराए।
0: अच्छा।
3: अपनी आँखों से कहो जरा कम इतराए, इन्हें पता है शुरुआत इन्हीं से की जाएगी। थैंक यू।
0: वेलकम जी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ सरोजी सेठी जी का। अच्छा यहाँ पे यानी कि जुड़ चुकी है नाम है इनका यानी कि तोसदीना खातून जी, बहुत बहुत वेलकम है तोसदीना खातून जी। और अनीतू सरन जी लिखते हैं अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं, फिलहाल अगला डिमांड सुनिए हमारे सरोजी सेठी जी का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद ये गाना। और ये तो गाना जब भी प्ले होता है तो ये गाना मतलब मेरी सुंदरता की मुराद जी के लिए ही बना हुआ है। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं और तुम्हें प्यार से कितना हम देखते हैं, मतलब क्या ही बोले। इस गाने को मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: हम देखते हैं और यहाँ पे नीतू शरण जी के सभी गाने लाजवाब है और सभी सुनने वाले का फीडबैक देने के लिए बहुत शुक्रिया करते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सरजीत सेट्टी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं और तुम्हें चाहत से हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सुपरहिट गाना सुनने को मिल गया है। और अनिल मेहता जी लिखते हैं वाह वाह वाह, धन्यवाद देते हैं इतने प्यारे गाने के लिए। ओके जी। और अर्पिता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं कि वाह, अस्सलाम वालेकुम अमन जी, गुड इवनिंग, और सॉरी आज मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेट तो होता रहता है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। काजल झक्का जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। और रूबी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, रिया खान जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये हमारे सर्वजीत शेट्टी जी के पसंद बहुत ही अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। कुत्ता बिनी जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज के सभी गाने लाजवाब चल रहे हैं, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि इस खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। साथ ही साथ आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ गांधीनगर गुजरात से, आरिफ सिंधी जी, रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ, धन्यवाद। ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन भैया
0: जी,
2: थोड़ी देर पहले प्रियंका जी का फीडबैक था जिसमें उन्होंने कलम कमज़ोर होने की बात की थी, तो अच्छा। उसी के संदर्भ में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि अल्फाज के शक्ल में एहसास लिखा जाता है, अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, यानी पानी को भी प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मैं रेडियो लिखूं तो रेडियो हॉट स्टार का नाम लिखा जाता
0: है। वाह वाह वाह,
2: थैंक यू भैया,
0: थैंक यू सो मच। और सुनील कुमार जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुनते हैं।
3: नजरिए हमारी न लग जाए तुमको यही

0: लाजवाब, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग, दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना फरमाइश करने के लिए। और अमन भैया आपका धन्यवाद है सुनाने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
1: ओके जी धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हमारे यूसुफ खान जी का ये डिमांड है और ये मेरी आवाज में गाना सुनना चाहते हैं, मतलब इस गाने के साथ ये चाहते हैं कि मैं गुनगुनाऊं। बिल्कुल गुनगुनाने वाला गाना है क्योंकि मेरा फेवरेट गानों में से एक है। तो भाई यूसुफ खान जी इंजॉय कीजिए इस पहले से डिमांड को। थैंक यू सो मच, आपने ये रिक्वेस्ट किया है कि मेरी आवाज में सुनना है। सुनवाते हैं आपको इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। आत्माराम की लिखते हैं कि अमन सर जी सभी दोस्तों की पसंद लाजवाब, और काजल झक्का जी, सर्वेश भगत जी और अरुणा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ओके जी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि ये हमें सर्वजीत शेट्टी जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, उनको धन्यवाद देते हैं। और पीकू राय जी लिखते हैं कि आज के सभी दोस्तों के गाने बहुत ही अच्छे अच्छे प्ले हो रहे हैं। और ये फीडबैक

0: थैंक यू, बहुत ही अच्छा प्यारा सॉन्ग था ये।
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ वाओ, बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच, इस गाने को सुनकर तो मजा ही आ गया। ओके जी, और फंसा हुआ है यहाँ पे, हाँ मिल गया। और यहाँ पे मंगेश दसमुख जी लिखते हैं आर्यमन जी सभी गाने सुपर हिट लाजवाब चल रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हुकुम चंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ ये देवराज यानी कि तोमर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि हेलो अमन सर जी, हाउ आर यू? बिल्कुल आई एम फाइन। यहाँ पे लिखते हैं यानी कि तोहिदीरा खातून जी के बहुत ही शानदार गाना है, नाइस सॉन्ग। राहुल पासी जी लिखते हैं कि तेरा मेरा है प्यारा अमर गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि ये तो मेरा भी फेवरेट है अमन जी, थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए, ओके वेलकम है आपका भी। शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि तेरा मेरा है प्यारा अमर गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि यूसुफ खान जी का डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, थैंक यू सो मच। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी पीकू राय जी का है, और पीकू राय जी सुनना चाहते हैं खाई है कसम, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे, बिल्कुल बना ही कर छोड़ेगा। फिलहाल फीडबैक शामिल करते हैं।
1: हेलो आरजे अमनसा जी, क्या आज रात 10 बजे आरजे आकांक्षा का प्रोग्राम प्ले होगा?
0: जी, मैं आपको बता दूं कि आरजे आकांक्षा जी का प्रोग्राम अब डेली यानी 6:45 से पौने 5 बजे से प्ले होता है, 6 बजे तक होता है। मतलब यानी कि 4:45 से स्टार्ट करती हैं और कभी यानी 5 बज जाता है भाई, अगर कभी लेट होता है तो। यानी 5 बजे से 6 बजे के बीच उनका प्रोग्राम डेली होता है। अब आप नहीं सुनते हैं तो इसमें खेद है। और यहाँ पे इन पीपल आई जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन सर जी, मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और काजल झका जी लिखते हैं, खाई है कसम वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन जी, अभी जी। आपने जो सॉन्ग सुनाया तेरा मेरा है प्यार अमर, वो सॉन्ग था तो बहुत ही अच्छा, बट आपने जो उसको दिल से गाया है वो सॉन्ग, उसमें 4 चांद लगा रहा है। लेकिन ये तेरा मेरा जो प्यार अमर है, इसका एक सॉन्ग और है जो मैं सुनाना चाहती हूँ।

0: बस थैंक यू।
1: अच्छा जी, वेलकम है आपका भी। और ये गाना सच में तेरा मेरा है प्यार अमर, ये भी बहुत अच्छा है। और ओके ओके ठीक है ओके। और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि भाई इन पिकू राय जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये भी डिमांड बहुत ही प्यारा था। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि खाई है कसम वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा, धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच। और जी आप संगीता अम्बुलकर जी बिल्कुल आपने सही कहा है। बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, आपका कौन सा गाना है जी, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ गाना कौन सा है, गाने यहाँ पे भेजिए मुझे, इस तरह से नहीं समझ पाऊंगा मैं। और यहाँ पे कुंता बेन जी लिखते हैं कि अमन जी आपका फेवरेट सॉन्ग और बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मनीषा शर्मा जी का है, सुनना चाहती है दबंग 2 का, ये बहुत ही प्यारा गाना, इंजॉय कीजिए।

वेलकम है कॉल, मेरे पास फीडबैक आया है यहाँ पे, यानी पीकू राय जी लिखते हैं कि अमन सर जी, मैं जॉब करते हुए भी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। एफएम नंबर वन है जो सच में दीवाना बना देता है, छोड़ने का मन नहीं करता। अच्छा ऐसा है। और संगीता अम्बुलकर जी लिखते हैं, मनीषा जी बहुत ही प्यारा गाना है आपका, धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं, दबंग टू का शानदार गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और मनीषा शर्मा लिखते हैं कि वेरी वेरी थैंक यू अमन जी, मेरा गाना प्ले करने के लिए धन्यवाद देते हैं, और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों का डिमांड एक से बढ़कर एक चल रहा है, थैंक यू सो मच। और प्रियंका जी क्या कहते हैं,

0: जी
1: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था ये
0: जी, हिमेश रेशमिया के बहन जी, बहुत ही प्यारा गाना था। राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही सुपर डिमांड, थैंक यू सो मच। और जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही वेरी नाइस सॉन्ग, और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल यादव जी का है, नंदलाल जी सुनना चाहते हैं ये बहुत ही प्यारा गाना, ओ माय गॉड। लेकिन अभी

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि यानी कि कल है ये बुधवार, और कल बुधवार के दिन आपको पता है ना हर तरह के गाने शामिल होते हैं, यानी भोजपुरी भी सुन सकते हैं जो मेरा फेवरेट है, और हिंदी तो यानी मिक्स मस्ती धमाकेदार होता ही है, तो सभी तरह के गाने कल सुन सकते हैं। और नंदलाल जी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और अब इसलिए कोई अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आमना खान जी का। आमना खान जी के बाद मैं आपके गाने को प्ले करूँगा नंदलाल जी।

0: वेलकम बैक। और इस गाने के लिए सच में आमना खान जी बनती हैं आज के सॉन्ग विनर। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हैं। विदा जी लिखते हैं अमन जी व्हाट्सएप पर भेज दिया, अच्छा यहाँ भी भेज सकती है, नो प्रॉब्लम। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि सर जी देखिए राजस्थानी गाना मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं राजस्थानी जो मुझे समझ में आएगा जिसको मैं गा पाऊंगा या समझ पाऊंगा वही मैं प्ले कर पाता हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। और यानी कि पीकू राज जी लिखते हैं कि आमना खान जी का पसंद बहुत मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आमना खान जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और एम डी जलील जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और प्रियंका जी क्या कहती हैं,
1: ओरे छोरे ने थामा आजिए आ चल है, मन में एक हल चल है, मैं ना बोलूंगी ये वो पल है, ओ सांवरिया।
2: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। और सर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी पसंद का एक सॉन्ग जरूर सुना के
0: जाना। अच्छा, नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मीरा कुमार जी लिखते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तो यानी फीडबैक आप यहाँ पे बोल कर भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और निकला जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए, थैंक यू सो मच। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा था। और एमडी रोजित खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। और लिखते हैं कि प्रोग्राम मस्त चल रहा है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ओरे छोरी वाला गाना मुझे मस्त लगा, सर जी मज़ा आ गया इस गाने को सुनकर। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमीना खान जी का पसंद बहुत अच्छा लगा है। और रवि मुहारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं आमना खान जी का पसंद सच में सुनकर दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और जी बिल्कुल, फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं सुनवा रहा हूँ। और ये एक्चुअली ये जो हमारे किन का था, नंदलाल जी का, तो नंदलाल जी एंजॉय कीजिए गाने को।

0: बिल्कुल हाँ हाँ है, जानू है और फीडबैक भी बहुत सारा है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। एमडी जलील जी लिखते हैं कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आज आपका गाना मैं प्ले करूंगा, क्योंकि मैंने कल आपके गाने को नहीं प्ले किया था, आज कोशिश करूंगा ये फीडबैक।
1: अरजय अमन सर जी, अमना खान जी और नंदलाल यादव जी और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हमको तुमसे प्यार है, हाँ हाँ है जानू है, गाना अच्छा लगा है। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। और एमडी ये रोजित खान जी लिखते हैं कि अच्छा जी कोशिश करूंगा लेकिन प्रॉमिस नहीं करूंगा। और पीकुराज जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ आरजे सोनी जी का। आरजे सोनी जी इंजॉय कीजिए।

0: एक्सट्रीमली स्टोरी राहुल पासी जी, इस गाने में राहुल पासी जी भी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और फीडबैक।
1: अरजय अमन सर जी, अरजय सोनी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: ओके, इतने सारे गानों की लिस्ट होती है कि मैं लिस्ट नहीं बनाता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लिस्ट बनाता था तो ये दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि लाइव से मैं रिक्वेस्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, डाउनलोड भी करना पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। आमना खान जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सरेश भगत जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ अरुणा जी और काजल झका जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके जी, और हैप्पी बर्थडे, आप लोग जियो हजारों साल। और पीकू राय जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद का गाना बहुत ही मस्त लगा है, धन्यवाद। काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी और राहुल पासी जी दोनों की पसंद बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। निशांत राय बड़े लिखते हैं कि दोनों की पसंद बहुत ही प्यारा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं, अमन सर जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ये फीडबैक सुनते हैं,
2: मैं जब तक पागल नहीं हूँ तब तक तुम्हारा हूँ, अच्छा। और जब मैं पागल हो जाऊँ तो तुम जमाने के लोगों के साथ पत्थर मार लेना। बहुत ही शानदार सॉन्ग है ये, और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे सोनी जी को इस सॉन्ग को प्ले करवाने के लिए, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मैं बता दूं कि राहुल पासी जी भी इसी गाने में शामिल थे। और कुंता जी लिखते हैं कि अमन जी आरजे सोनी जी के पसंद ये डिमांड बहुत ही प्यारी है, और साथ साथ राहुल पासी जी को धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगले जो डिमांड है वो ऋषिता जी का है, सुनना चाहती है, तुझे मांगा था तुझे पाया है, अब जाके नाम पे यकीन आया है, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये इशिता जी के पसंद फिल्म राम शास्त्र का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और पिकुरा जी लिखते हैं कि ये तुझे मांगा था तुझे पाया है गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं कि हर बार मुझे खींच लेती है मोहब्बत तेरी, लिखते हैं कि हर बार खींच लेती है मोहब्बत तेरी और तुझ बिन अधूरी है जिंदगी मेरी, एक दूसरे को समझना भी पड़ता है और सिर्फ हाथ पकड़ लेना मोहब्बत नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है, फिलहाल मैं प्ले करता हूँ आरजे रिया खान जी की पसंद है और ये सुना चाहती है जग घूमिया। इंजॉय कीजिए सभी दोस्तों को डेडिकेट है।

0: बिल्कुल जग घूमिया और थारो जैसा ना कोई कोई नहीं है तुम्हारे जैसा भाई। और कुंता जी लिखते हैं कि वाओ वाओ वाओ वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया है, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे ऋषिता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और देवराज तोमर जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा, ओके जी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सलमान खान सर के मूवी का ये सॉन्ग भी लाजवाब होता है, और ओके जी ठीक है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि जग घूमिया थारो जैसा ना कोई गाना बहुत ही प्यारा लगा है। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि हाँ आपका गाना मुझे चेक करना पड़ेगा, देखते हैं कौन सा गाना है आपका, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ओके ठीक है, मिल गया मुझे आपका गाना। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ बबीता जी का। बबीता जी क्या सुनवाना चाहती है सुनते हैं।
1: नमस्ते अमन सर जी, मैं ये गाना भेज रही हूँ, अभी टाइम मिलता है जैसे जैसे मैं भेजती हूँ क्या कहूँ, तो जिसमें मनीषा और जैकी श्रॉफ नाना पाटेकर हैं और गाने बोले हो पिया पिया प्यार क्यों इतना किया, जो कुछ था तुझे दे दिया हो पिया प्यार क्यों इतना। अमन सर जी इस गाने में आपको और दोनों बिटिया रानी को रेडियो स्टार दीजिए, हमारे दीवाने दीवाने सब कुछ
0: एंजॉय कीजिए। बबीता जी

0: ओ माई गॉड, मैंने देखा भी नहीं और समय 9:30 हो चुका है। ओ माई गॉड और फरमाइशों की संख्या, ओ माई गॉड, बारिश आई हुई है, बाढ़ सी आ गई है, ओ माई गॉड, मैं क्या करूं यार। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत है। रवि जी लिखते हैं कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, सुपर लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच आरजे रिया खान जी को। और आमना खान जी लिखते हैं कि बबीता जी का नाम तो भाई बिंदास बबीता होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दत्ता जी लिखते हैं कि बबीता जी का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया उनको। बाबूलाल जी लिखते हैं कि बबीता जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है। और निकला जी क्या कहते हैं,
1: ओ गुडनेस मी बबीता जी, व्हाट अ सॉन्ग, ओ माय गॉड, वंडरफुल सॉन्ग बबीता जी, थैंक यू सो वेरी मच आरजे अमन एंड वंडरफुल बबीता जी,
0: थैंक यू सो मच, वेलकम जी आपका। और राहुल पासे जी लिखते हैं ओ पिया गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि तुमसे मिलकर समझा हूँ कि इन प्यार का असली मतलब क्या होता है, और तुम्हारे बिना हर लम्हा जैसे बिना रंग के सफर होता है। अच्छा, और सर्वेश भगत जी लिखते हैं कि अच्छा ओके कोई बात नहीं। और अर्पिता जी नहीं जी ओके। और यानी कि मीना इब्राहिम जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और पीकू राय जी लिखते हैं कि बबीता जी के पसंद बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गाने प्ले हो रहे हैं। कुंता जी लिखते हैं कि बबीता जी का डिमांड बहुत ही प्यारी है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ ये मीना कुमारी जी का। मीना कुमारी जी इंजॉय कीजिए।

और मैं गाना प्ले करूंगा और फीडबैक भी शामिल करूंगा, लेकिन इस यानी कि सोनू जी के गाने के बाद बेचारे उस समय से परेशान है, मेरा गाना प्ले कर दीजिए, गाना बहुत उन्होंने चेंज किया। तो भाई यानी कि सोनू जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: बिल्कुल प्यार हमारा अमर रहेगा और याद करेगा जहाँ, और उतरी है तू आसमान से सच में बिल्कुल सुंदरता की मुरज जो है। और गुड बाय।
1: नमस्ते अमन सर जी, आपने मेरा गाना चलाया, दिल से धन्यवाद। और सारे दोस्तों को वाओ, निकलेश भाई साहब को और जितने हमारे दोस्त हमारे भाई बहन सब ने फीडबैक दिए मेरे, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अमन सर जी, मैं तो छत पे भाग आई हूँ जल्दी जल्दी पौधे में पानी देने के बहाने से। अच्छा। चाय के लिए चिल्ला रहे नीचे से, जल्दी आ रही आ रही आ रही, अब गाना खत्म हुआ अब जा रही है। अमन सर जी, नीचे नेट काम ही नहीं करता, क्या करें, इधर बारिश से मौसम सा हो रहा है तो हवा चल रहा तेज, तो नेट काम नहीं कर रहा आज, बिल्कुल नहीं नेट काम कर रहा, इसलिए आज तो बस।
0: कोई बात नहीं, गाना प्ले कर दिया आपका ना, अब खुश है ना आप। और यहाँ पे संगीता जी लिखते हैं वाओ, बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हद से ज्यादा तुझे चाहा, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि मैं भी हद से ज्यादा रेडियो हॉटस्टार को मैंने प्यार किया है अमर शाह जी, और हमेशा करता रहूंगा, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी, यानी कि कल आपके यहाँ खीर बनेगी यार बढ़िया मुझे नहीं पता है। और ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि अमन जी मैं आ गई हूँ, ओके ओके, आपका गाना तो अब यानी कि लास्ट में प्ले होगा क्योंकि वो बर्थडे सॉन्ग है, इसीलिए मैं लास्ट में प्ले करूँगा, मुझे आप याद दिला दीजिएगा प्लीज़। अजय भगत जी लिखते हैं कि फिलहाल मैं भी यानी कि ट्रेन में हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ, अच्छा ऑल फैमिली के साथ, हैप्पी जर्नी, ओके जी। और काजल झका जी लिखते हैं कि शानदार गाना चल रहा है। और एमडी रोजित खान जी लिखते हैं कि अच्छा। और बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि ये सुनील जी की डिमांड बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दत्ताक्रम जी यहाँ पे लिखते हैं कि सुनील जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू भाई सोनू जी। जागीर खान जी लिखते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे तुझे देखूँ तो सारा जहाँ नजर आता है, और तेरे बिना जिंदगी का हर लम्हा अधूरा नजर आता है, नहीं चाहिए मुझे जमाने की खुशियाँ, तेरी एक मुस्कुराहट में मुझे रब नजर आता है, वाह क्या बात है। मीना जी लिखते हैं वाओ, बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, और बस इन तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म, और मुझे लाखों की जरूरत नहीं, आप मेरे लिए करोड़ों में एक, वाह क्या बात है। और पिकू राय लिखते हैं कि ये प्यार हमारा अमर है गाना बहुत ही प्यारा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मैं प्रोग्राम को यानी कि सुन रही हूँ, बस थोड़ा व्यस्त हूँ, फीडबैक नहीं दे पा रही हूँ, कोई बात नहीं है। ये कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच सोनू जी का ये फीडबैक।

0: थैंक यू, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नहीं सर, आज आपका गाना नहीं प्ले कर पाऊंगा, शायद इसके लिए सॉरी। जलील जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और रवि मार जी लिखते हैं कि प्यार हमारा मरेगा गाना चल गया। अगला जो डिमांड है हमारे स्नेहा कुमारी जी का है, ये तो मेरा फेवरेट गानों में से एक है। तो स्नेहा जी थैंक यू सो मच इस गाने की डिमांड करने के लिए, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है, सच में मेरी जिंदगी है, सिर्फ मेरी जिंदगी है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और जलील जी, आपने जो गाना भेजा मुझे समझ में नहीं है वो कौन सा गाना है, जरा प्लीज उसका लिंक हो सके या फिल्म का नाम मुझे लिखते तो मुझे आसानी होती ढूंढने में। फिलहाल ये फिल्म है।

0: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राहुल पाची जी लिखते हैं कि प्यार हमारा अमर रहेगा, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि स्नेहा जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना है। और ओके, फिलहाल यहाँ पे यानी कि शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि तू मेरी जिंदगी है, गाना बहुत ही बढ़िया लगा है। और जुड़ चुके हैं हमसे यानी विशाल अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं विशाल अग्निहोत्री जी। और ये क्या कहती हैं,
2: अमन जी ये सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, बट ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। लोगों की डिमांडें भी कहाँ कहाँ से आती हैं, और ये सॉन्ग तो मैंने पहली बार ही सुना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा था। थैंक यू इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: वेलकम जी। इसके बाद अगला जो डिमांड है, हमारे अशोक देशमुख जी का जो ग्रुप है उनका डिमांड है, इसमें शामिल है हमारे अशोक देशमुख जी, सर्वेस भगत जी और आत्माराम पाटिल जी।
3: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार।
3: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
1: वेलकम जी।
3: आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है गुलाम और गाने का बोल है, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा।
1: बिल्कुल।
3: ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
4: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है गुलाम और गाने का बोला है आँखों से तूने क्या कह दिया।
1: अच्छा।
4: और डे स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश, निकुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता किमरत जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे सोनी जी, आर जे एम एस परमार जी, आर जे वंशिका जी, और सभी आर जे, आर सभी भाई, आर सभी बहन, और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी।
1: एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। ओके जी, और फिलहाल मीना जी लिखते हैं कि मोहब्बत से मोहब्बत तब हुई जब मोहब्बत तुमसे हुई। मोहब्बत की है तुमसे बेफिक्र रहो, नाराजगी हो सकती है नफरत नहीं। वाह क्या बात है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि तू मेरी जिंदगी है गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और जलील जी लिखते हैं कि सर जी हाँ भेज दिया मिल गया मुझे। और प्रियंका जी क्या कहते हैं।

0: वेलकम जी। और अशिल्पा बेन जी लिखते हैं कि गुलाब का गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और आत्माराम जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा सभी भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, थैंक यू सर, लाख लाख धन्यवाद। और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: और अकाजल सका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय सर्वेश भगत जी, अशोक दशमुख जी, आत्मराम जी के सभी के पसंद शानदार लगे, धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक लेते हैं।
2: मुझे लगता है कि मेरा जो सॉन्ग था वो आज के थीम पे नहीं था। हाँ। या फिर गजल है
0: जी,
2: और
0: जी,
2: थोड़ा सा बड़ा गजल है इसलिए।
0: हाँ।
2: वो सेट नहीं हो पा रहा है प्रोग्राम
0: जी,
2: में
0: जी,
2: तो कोई बात नहीं, मैं हताश नहीं हूँ।
0: हाँ।
2: थोड़ा सा निराश हूँ, इतने सारे दोस्तों के जो गाने चल रहे हैं सारे अच्छे हैं।
0: हाँ।
2: और उन्हीं में अपनी खुशी तलाश रहा हूँ। और कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं बना रहूंगा अभी जब तक आपका रेडियो चल रहा है।
0: धन्यवाद। ओके, हाँ ये तो बात आपने सही कहा कि वो आज के थीम पर बिल्कुल शामिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आरजे आकांक्षा जी रात के 10 बजे बहारे यानी कि गजल लेके आने वाली हैं और एक हाले दिल का प्रोग्राम लेके आने वाली हैं, जिसमें हाले दिल में वो आप लोगों से बातें करेंगी, यानी कि रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से वो आपको यानी कॉल लगाएंगी, आपसे बातें करेंगी और आपके पसंद के गाने सुनवाएंगी। और बहारे गजल में गजल वाले प्रोग्राम लेकर आएंगी दो दिन, सैटरडे एंड फ्राइडे को। तो इंतजार कीजिए, उनके प्रोग्राम में गजल भेजते रहिएगा। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आंखों से तूने क्या कह दिया गाना बहुत प्यारा लगे, धन्यवाद देते हैं। कुंता जी लिखते हैं कि आदरणीय सरोज भगत जी, अशोक दशमुख जी, आत्मारा पंडित जी सभी के पसंद बहुत ही प्यारी लगी। इसके बाद अगला जो डिमांड है संगीता अम्बुलकर जी का, इनका यानी मन नहीं लग रहा है बिल्कुल, इसलिए गाना सुना चाहती हैं, सुनवाते हैं।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। एमडी जली जी लिखते हैं, बहुत ही स्वीट संग है। हाँ हाँ, इसमें रवि मर्जी लिखते हैं का शो देश मुझे सरोज भगत जी, सभी की म्यूजिक फरमाइश नंबर वन लगी है। और मीना जी लिखते हैं कि जिस खुशी की तलाश थी हमें, बस वही हो तुम। और कभी तो पढ़ो यानी सही मेरी आंखों को, यहाँ दरिया बहता है मोहब्बत। अच्छा, और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और पीकर अभी यानी कि पीकू राय लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत मस्त है। वशिपा बहन लिखते हैं कि मनवा लागे, बहुत बढ़िया गाना है, रेडियो हॉट अटैक के दीवाने दीवानियों ने और ये नेटवर्क हमें पागल बना दिया। बिल्कुल सही कहा, नेटवर्क डिस्टर्ब कर दिया बहुत ज़्यादा। अशोक देशमुख जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी हमारे फरमाइश को गीत प्ले करने के लिए। और फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे एमडी जलील जी का, जलील जी सुनवा।

वेलकम बैक। और इसी बात पर जो दो विनर बने हुए हैं, पहले उनका गाना प्ले कर दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि उन लोग का गाना नहीं प्ले हुआ। तो सबसे पहले मैं प्ले करूंगा जागीर खान जो यानी विनर बने थे पहले उनके गाने को, फिर आमना खान जी के गाने को मैं प्ले करूं, उसके बाद मैं प्ले करूंगा और दोस्तों के गाने, मतलब जितना हो सकेगा उतना। फिलहाल जागीर खान जी एंजॉय कीजिए।

मेरे पास रहते हो, चाहे जितने भी दूर हो मेरे पास हो, दिल के करीब, एकदम दिल में। ऐसी अगला जो डिमांड है आमना खान जी का है, सुनवाते हैं, जो आज विनर बनी हुई थी।

0: और अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ, लेकिन फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे हैं, फीडबैक शामिल करता हूँ पहले। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, सुनते हैं।
1: मन के धागे,
0: अच्छा
1: धागे पे तोरे, धागे पे तोरे, ये लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। बहुत ही प्यारा सॉन्ग
0: जी, बिल्कुल। और ज्योति जी लिखते हैं कि ये संगीता जी के पसंद बहुत ही लाजवाब थी जी, धन्यवाद देते हैं। और उनको दीपक कुमार जी लिखते हैं कि हाँ जी, आपका रिक्वेस्ट आया हुआ है लेकिन प्ले नहीं हुआ अभी तक, क्या करूं, बहुत सारी डिमांडें छूटने वाली हैं आज। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और MD जलील जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि अब तो इन 10 बज ही चुका है तो मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट जी आपका। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। और विशाल अग्निहोत्री जी लिखते हैं कि जी अगला जो गाना आप ही गाने वाला है भाई, विशाल अग्निहोत्री जी टेंशन मत लीजिए। पीपुर लिखते हैं कि अमन जी आप जब गाते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, तो कोई कोई गाना मुझे याद भी नहीं रहता है ना, तो क्या करूं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि आमना खान जी के पसंद बहुत ही मस्त लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना खान जी के पसंद बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी लगी है। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि ये भी डिमांड बहुत ही प्यारा है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: थैंक यू सो मच सर, दोनों सॉन्ग डिमांडों को पूरा करने के लिए और फीडबैक देने के लिए सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं जाकिर खान, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और संगीता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए, और ये भी गाना लाजवाब था। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि थैंक यू आमना खान जी, इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए।

रेडियो हॉटेटा यानी सुनने का एक अलग ही मजा है। थैंक यू सो मच आमना खान जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। ओके जी, और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया है। गजानंद जी लिखते हैं कि संगीता मुलकर जी के पसंद भी बहुत ही प्यारी लगी है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और देवेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि सर जी इधर आप भेज रहे हैं बताइए। ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो विशाल अग्निहोत्री जी का है, गोरी है कलाई है, इंजॉय कीजिए।

0: वैसे मेरे पास फीडबैक बहुत आए हुए यार, मैं क्या करूं, आज मुझे प्रोग्राम लग रहा है थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से दोस्तों की डिमांड छूटने वाली है। अगला जो यानी डिमांड है हमें यानी कि सुनील कुमार जी के, और सुनील कुमार जी के बाद मैं ज्योति खरवड़ी जी का गाना प्ले करूंगा क्योंकि वो बर्थडे वाला गाना प्ले करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले यानी कि सुनील कुमार जी का गाना प्ले करता हूँ, फिर मैं आता हूँ तो फीडबैक शामिल करूँगा, कोशिश करूँगा।
1: अमन भैया गुड इवनिंग, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। आज की 90 स्पेशल में मेरी पसंद रहेगी फिल्म का नाम उलझन और गाने के बोल हैं तूने एक पल के लिए प्यार से देखा मुझको। और ये गाना मन भैया पहले तो आपको डेडिकेट है, आपकी सुंदरता की मूरत को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे परमार जी को, आरजे वंशिका जी को और सोनू गौतम, प्रिंस पासवान जी, मुक्तिनाथ जी, परवेज अहमद जी हैं, सतीश शर्मा जी और नेकलस जी हैं, अरुण मंडल जी हैं और जेठालाल जी हैं और MD ताहिर हैं, और इनके साथ साथ रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट रहेगा। धन्यवाद,
0: एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, सभी फीडबैक को कैसे शामिल करूं, माय गॉड। आमना खान जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों को फीडबैक देने के लिए बहुत शुक्रिया है। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मैं हूं ना का सॉन्ग मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। धन्यवाद देते हैं आमना खान जी को। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं?
1: अमन भैया, अपने देश में बॉलीवुड के जितने भी गाने बने हैं एक से बढ़ के एक बने हैं, और सुनने पर मन आनंदित हो जाता है। और फिर इतना सब सुनने लिखने के बाद और जितने भी फिल्म क्षेत्र के कलाकार हैं जो भी इसमें काम करते हैं या कर रहे हैं, इतना सब होने देखने के बाद भी ये ड्रम में भरने वाली लड़कियां कहां से पैदा हो जा रही हैं।
0: ओह माय गॉड, ये फीडबैक क्या कहती हैं?
2: मेरा मन के तो जो पिया साथ चलेगा,
0: अच्छा
2: जो भी देखेगा वो हाथ मिलेगा।
0: अच्छा जी।
2: प्यारी अपना जब हद से बढ़ेगा, होंगे तो होंगे रुसवाइयां गोरी है कलैया। थैंक यू।
0: ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार, गाना फेंकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुंता जी लिखते हैं कि आदरणीय गजानंद सुरकार जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, सभी को धन्यवाद देते हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड गजानंद सुरकार जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यारी थी, थैंक यू सो मच। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं, अमन जी आज जो भी फरमाइश आई थी सभी गाने बहुत शानदार है, सुनने में आनंद आ गया है, ऐसे ही प्रोग्राम देते रहिए, शुक्रिया रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दिया। और निकला जी का
3: I'm driving car right now.
0: Yes.
3: But Mr. Sonil Kumar is such a nice man. Thank you very much, Sonil Kumar.
0: Okay. वेलकम सर जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तूने एक पल के लिए प्यार से देखा है, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। मीना जी लिखते हैं वाओ बहुत ही खूबसूरत गाना है, थैंक यू सो मच। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि सर जी बहुत ही प्यारा गाना है, शामिल करने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये फीडबैक
4: आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चला, काफ़ी अच्छा, सभी दोस्तों के गाने बहुत अच्छे अच्छे बजे हैं, और क्या ही कहें, प्रोग्राम इतना अच्छा लगा आज का। थैंक यू सभी दोस्तों को, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी अभी तक सुन गई हूँ, मैं काजल सीतामढ़ी से।
0: और मैं बता दूं कि आप ही नहीं, हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त सुन रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं। और पिकुरा लिखते हैं कि ये पहली बार गाना सुना मुझे अच्छा लगा, इसी बात पर अगला जो डिमांड है ज्योति खटवड़े जी का है, और आज उनकी दीदी अरुणा जी का इन बर्थडे है, और उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए ये गाना सुनना चाहती हैं, और तो सुनवाता हूँ। और इसी गाने में एक्चुअली आज और भी दोस्तों का बर्थडे है, जैसे कि सर्वेश भगत जी और काजल झका जी, तो बर्थडे सॉन्ग तो एक होना चाहिए था ना, इसीलिए इस गाने को मैं सुनाऊंगा।
5: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: बिल्कुल, बजाते रहो दिल से। और कभी कभी क्या होता है, गाना डाउनलोड कर दो लेकिन वो गाना छू मंतर हो जाता है। जीरो बैट का शो कर रहा है फिलहाल, देखता हूँ इसमें कितना समय लग सकता है। आई होप गाना तो छोटा ही है लेकिन अभी तक डाउनलोड में लगा हुआ, अटका पड़ा हुआ है। नो प्रॉब्लम, गाने को मैं प्ले करूँगा ज़रूर, या जब तक गाना डाउनलोड हो रहा है कोई और गाना प्ले कर दो। नहीं, फिलहाल तो बर्थडे वाला ही गाना प्ले करूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इस गाने के लिए। चलिए एंजॉय कीजिए गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। रवि मुखर्जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग हमारे गजन सलोकार जी का सुनने को मिला था, मुझे मजा आ गया सुन के। और पिकू राय जी लिखते हैं कि जो दोस्त का हैप्पी बर्थडे है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, वो हमेशा खुश रहें। और आमना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और आज मैं विनर बनाना भूल गया हूँ अभी तक, चलिए देखता हूँ आज किनका नंबर आता है। तो अगर आप मुझे जिनका मैं यहाँ पे नंबर आएगा वो मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं उनको फ़ोन लगाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल इस गाने के बाद एक गाना मैं तब तक यानी कि प्ले करता हूँ, और ये गाना है हमारे यानी कि दत्तक कदम जी का, सुनवाते हैं।

0: इस बार नंबर आया है यानी काजल झक्का जी का। ओ माय गॉड, तो काजल झक्का जी अगर आप सुन रही हैं तो मैसेज कीजिए जल्द से, मैं आपको कॉल लगाऊंगा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिएगा प्लीज। मेरे पास फीडबैक बहुत सारे हैं, शामिल कर लेता हूँ मैं ये फीडबैक।
1: ये सॉन्ग तो मेरी सिस्टर मुझे भेजेगी क्योंकि मैं उसकी दीदी।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सो मच ज्योति जी, ये बहुत लाजवाब सॉन्ग
0: जी। थैंक यू सो मच, आपने प्यारा फीडबैक दिया। शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मेरी तो कोई बहन नहीं है लेकिन ये ज्योति जी की पसंद बहुत ही बढ़िया लगा है, थैंक यू सो मच। गजानंद जी लिखते हैं कि दत्ता जी की भी पसंद बहुत ही शानदार है। और चलो भाई पीछे चलो जल्दी जल्दी, कभी कभी देर लगाता है ना, मेरी स्पीड को कम कर देता है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये दिल कहे तो दे दूँ, गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और ये क्या कहती हैं, इनके सुनते हैं।
2: हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आरजे रिया खान सर जी के प्रोग्राम से जुड़ चुकी हूँ और सर जी के प्रोग्राम को काफ़ी देर से इंजॉय कर रही हूँ। और सर जी, हमारे भी आपने फरमाइश को प्ले किया तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अमन सर जी, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम आज, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जिन दोस्तों का भी बर्थडे है, और जैसे कि हमारे आदरणीय सर्वेश भगत जी का बर्थडे है और हमारी किसी दी का भी बर्थडे है तो, और काजल दी का भी बर्थडे है, तो बहुत बहुत आर्जेरिया की तरफ से शुभकामनाएं इन सभी को दिल से। और इन सभी के लिए एक लाइन गाना गुनगुनाना चाहूँगी। ये गाना तो जन्मदिन पर अगर नहीं प्ले होता है तो क्या बताएं, जन्मदिन मतलब क्या अधूरा सा लगता है। तो चलिए मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बार बार दिन ये आए,
0: अच्छा।
2: बार बार दिल ये गाए, तू जिए
0: हजारों साल जी। बिल्कुल, और फीडबैक सुनते हैं।
3: थैंक यू अमन जी, मेरे अरुणा दीदी के लिए सॉन्ग सुनाने के लिए और उसका दिन अच्छा बनाने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। लेकिन आज अरुणा दीदी गायब है, बिल्कुल आज वो आई नहीं है, ये फीडबैक सुनते हैं।

0: जिंदगी बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सॉन्ग। और इसी गाने के साथ सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। मैं रवि मोहाड़े, बैतूल, मध्य प्रदेश।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अरे सर जी मैं क्या करूं, मैं अभी जाने चाह मेरा इन मम्मी का इन तीन बार कॉल आ चुका, मैं उनसे बातें कर चुका कि मैं आ रहा हूं लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। यहां पे कुंता भी नहीं लिखते हैं कि वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड थी ज्योति जी की आज का, मतलब जितने भी दोस्तों का बर्थडे है और सभी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और काजल जी लिखते हैं कि सुन रही हूं जी, तो कॉल लगाता हूं मैं आपको।

0: ओके, फिलहाल एक बार एप्लीकेशन को इन गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कीजिए। जब तक अपडेट नहीं कीजिएगा आपको कॉल नहीं लग सकता है, क्योंकि जब तक ऐप ये जब भी होगा ऐप से ही होगा। तो फिलहाल अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, और अरुणा जी का फीडबैक आया हुआ, शामिल करता हूँ।
1: थैंक यू अमन जी, ज्योति का गाना प्ले करने के लिए, मुझे याद करने के लिए, बर्थडे की दुआएं देने के लिए। थैंक यू सो मच, और मेरे श्रोता भाई बहन सबको मेरी तरफ से थैंक यू कहना।
0: ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी कायनात जी का है। लिखते हैं कि यानी कि तेरी पसंद मेरी चाहत बन गई, लिखते हैं कि तेरी पसंद मेरी चाहत बन गई, और तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल की राहत बन गई, और इन खुदा और खुदा भर दे वो तेरी दामन को खुशियों से, क्योंकि तुझे खुश देखना मेरी आदत बन गई। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और काजल झका जी, अगर आपने ऐप को अपडेट कर लिया होगा तो प्लीज मुझे बताइए जल्दी से। फिलहाल राधा कृष्ण गोप का मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, और इसके बाद से अगर मैसेज आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है।

0: मैं तुझे देने।
1: वेलकम बैक और फीडबैक आ चुका है मेरे पास। अब तो मैं इंतजार नहीं करने वाला हूँ, सीधे कॉल लगाऊंगा।
2: 11 बजने जा रहे हैं सर जी, क्या कर रहे हो? बहुत लंबा जा रहा है प्रोग्राम, अपनी सेहत का ख्याल रखिए।
1: धन्यवाद, बस जाने ही वाला हूँ। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी ये सब गाना बहुत अच्छा लग रहा है। और विष्णु जी लिखते हैं कि आज तो खूब यानी कि टाइम बढ़ा दिया। हाँ एक्चुअली मैं लेट से आया था ना, इसीलिए तो सीधे कॉल लगाता हूँ अनिल कश्यप जी को पहले और इनसे बातें करता हूँ। आई होप इनसे बात हो जाए। अनिल कश्यप जी आपको फाइनली नंबर आप ही के भाग में था, लग गया।
3: बस बढ़िया है, थोड़ा सा वायरल फीवर जैसा फील हो रहा है कल से, बट अभी ठीक है जी। और थीम पे गाना नहीं चला था मेरा, तो थोड़ा सा निराशा हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं।
1: आप यहाँ पे लीडर बोर्ड में यानी कि टॉप पर दिख रहे थे, तो मैंने अब लॉटरी नहीं निकाला, सीधे आपको कॉल लगा दिया।
3: हाँ हाँ हाँ, तो जब भाग में होगा तो ये कौन बचा सकता है।
1: सही बात है जी, बिल्कुल।
3: एक चीज हमें बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया, मैंने पूछा कि कब तक प्रोग्राम चलेगा, तो आपने बताया कि फोन आ रहा है घर से मम्मी का, तो माँ शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के लाइफ।
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: जी, तो ये बहुत इमोशनल करने वाला पल था मेरे लिए।
1: अच्छा,
3: क्योंकि मैं भी कभी कभी लेट होता हूँ तो ऐसा होता है।
1: अच्छा,
3: वही चीज मुझे फील हुआ।
1: बिल्कुल, तो वो अब तक 3 बार फोन कर चुके हैं कि कब तक आ रहे हो, हम बस मतलब कि आ ही रहा हूँ, आते आते कितना देर हो गई, समझ रहे हैं ना। फिलहाल जल्दी बताइए गाना कौन सा सुनना है।
3: चाहत ना होती कुछ भी ना होता।
1: चाहत ना होती, हाय क्या बात है। चाहत चाहत ना होती कुछ भी ना होता, है ना
3: जी। जी
1: चाहत नदियां, इंजॉय कीजिए, सुना दिया।
3: थैंक यू।
1: और एक चीज और, हेलो
3: जी जी,
1: एप्लीकेशन से फोन गया है आपको, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे बात करके?
3: देखिए अच्छा लगा, मतलब एक एक चमका डिस्प्ले तो हम बोलेगा रे।
1: हाँ।
3: तो देखे कि कॉल है आपका, आज अमन लिखा हुआ है, बहुत खुशी हुई मन में।
1: और वो भी एप्लीकेशन से है कि नहीं?
3: जी जी, और साफ भी सुनाई दे रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये फोन का कॉल नहीं है, लग रहा है कि बस फोन ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेन खूबी है रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। इंजॉय कीजिए गाने को। और इसके बाद मैं आखिरी गाना प्ले करूंगा, वो शिल्पा बेन जी का होगा। और बाकी दोस्तों से मैं माफी चाहूंगा जिनका

आज के प्रोग्राम ने मजबूर कर दिया मुझे वॉइस फीडबैक के लिए। आज के सभी सॉन्ग्स एनर्जी ड्रिंक के जैसे थे, यानी प्रोग्राम रेडबुल रहा। और मैं दुआ करती हूँ आरजे अमन जी, अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, आपकी इस मेहनत को 10-12 अवार्ड में बदल दे, और हम सबको इतना एनर्जी और इतना स्ट्रेस लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: देख यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।

के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

उसके लफड़े लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े।

0: मुंडी खोली हंस के बोली जाने तमन्ना अंदर आओ पहले तो कुछ खाओ आओ फिर बिस्तर पे होंगी बातें बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
0: तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी, माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी पे

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।